मसनू जहानत मैदान जंग में क्या किरदार अदा कर रही है? ओज़वेलन इस सवाल का, जिसके शायद सफहात पर मुहित जवाब हो सकते हैं, एक ऐसा उमूमी खाका खींचते हैं जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। सबसे पहले वो याद दिलाते हैं कि मसनू जहानत का इस्तेमाल यकीनन इससे पहले भी खसूसी ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस के अमल और मुख्तलिफ असलहे के निज़ामों में होता रहा है, लेकिन वो बताते हैं कि इस्तेमाल का ये तरीका ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स और मसनूआत की हद तक इनफरादी या अलग थलग रहा। ओज़वेलन कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हदफ की शिनाख्त बगैर पायलट की गाड़ियों की नेविगेशन या तस्वीरी तज़िया जैसे शोबों में मसनू जहानत से लेस निज़ाम इस्तेमाल किए जा रहे थे। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आज हम जो तब्दीली देख रहे हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मरहले को जाहिर करती है। मसनू जहानत अब इनफरादी निज़ामों के अंदर काम करने वाली एक मददगार टेक्नोलॉजी रहने के बजाय मजमू ऑपरेशन के तालमेल को तेज करने वाली एक अहम तह में तब्दील हो रही है। वो याद दिलाते हैं कि इससे पहले यूक्रेन की जंग में मसनू जहानत पर मबनी मसनूआत का इस्तेमाल मैदान जंग और महाज के पीछे दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था। अब वो इस बात पर जोर देते हैं कि मसनू जहानत बराह रास्त फैसला साजी के पैरामीटर्स के मरकज में आ चुकी है और उसने इन अमल को बेपनाह रफ्तार दी है। मसनू जहानत महज एक मददगार उंसुर नहीं रही। अल्बर ओज़वेलन ठीक इसी नुक्ते पर एक बहुत ही कीमती तारीफ बयान करते हैं। इसलिए अब हमें मसनू जहानत की मदद से लड़ी जाने वाली जंग के बजाय मसनू जहानत पर मबनी जंगी हालात के बारे में बात करनी चाहिए। फिर वो अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, करीब माजी में इंटेलिजेंस के तजियाती अमल कुछ ऑटोमेशन एप्लीकेशन के बावजूद इंसानी मेहनत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते थे। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात और फील्ड रिपोर्ट्स का जायजा मुख्तलिफ टीमों के जरिए लिया जाता था। इस डेटा को एक जगह जमा करके एक बामानी तस्वीर बनाने में वक्त लगता था। आज मसनू जहानत इस बहुत बड़े डेटा पोल को बयाकवक्त स्कैन और लिंक करके फैसला साजों के सामने बहुत तेजी से एक वाज़ह तस्वीर पेश कर सकती है। मसनू जहानत की तरफ से अमल को तेज करने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि जंगें भी उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएंगी, बल्कि ये ऐसे नए पेचीदा मसाइल और जंग के फैलने के खतरात का बायस बन सकती है जिनका पहले कभी तजुर्बा नहीं किया गया। मसनू जहानत मैदान जंग में क्या कुछ कर सकती है? यहाँ ओज़वेलन मामले को मजीद वाजे और ठोस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर वो बताते हैं कि मसनू जहानत के जरिए दुश्मन के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की नकलो हरकत की मॉडलिंग की जा सकती है, या फिर फिजाई दिफाई निज़ामों की तैनाती, फौजी तनसीबात में सरगर्मियों की शिद्दत, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक नशरियात की सरगर्मियों में तब्दीलियाँ, या कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क की मवासलाती शिद्दत जैसे इंतहाई स्ट्रेटेजिक मामलों में मसनू जहानत अहम किरदार अदा कर रही है। सैटेलाइट तस्वीर, ड्रोन्स के जरिए की जाने वाली जासूसी, ओपन सोर्स स्कैनिंग और मुख्तलिफ सेंसर से हासिल होने वाले सिग्नल्स पर मुश्तमिल बड़े डेटा सेट्स, जब इन सब का मसनू जहानत से तज्जिया किया जाता है तो फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग और मैदान जंग में होने वाली तब्दीलियों की निगरानी दोनों में ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है। ओज़वेलन कहते हैं कि यह सूरत हाल रिवायती जंग के अंदर एक नई गैर मुतमासिल ताकत पैदा करती है जो फरीक डेटा को ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर सकता है, उसे जंग की रफ्तार का तायुन करने का फायदा हासिल होता है। जो इस तब्दीली को सही तरीके से समझेगा वही आगे बढ़ेगा। यकीनन मैदान जंग में मसनू जहानत का इस हद तक नुमाया होना कुछ खदशात और अगर वाज़े अल्फाज में कहा जाए तो खौफ भी अपने साथ लाता है। अल्पर ओज़वेलन के मुताबिक असल मामला खौफजदा होना नहीं बल्कि इस तब्दीली को सही तरीके से समझना और संजीदगी से उसके लिए तैयार रहना है। ओज़वेलन इस बात का जिक्र करते हैं कि आज मसनू जहानत एक कुव्वत को कई गुना बढ़ाने वाला उंसुर है। यह उंसुर जंगों की रफ्तार, फैसला साजी के चक्करों और इंटेलिजेंस के मुकाबले को बुनियादी तौर पर तब्दील करता रहेगा। हम इस नए दौर के अभी बिल्कुल आगाज में हैं जो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है।

तो क्या तुर्की मैदान जंग में मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर सकता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले, जिसके बारे में हम सब मुतजस्सिस हैं, ओजबिलन बताते हैं कि तुर्की की दिफाई सनत में तैयार किए जाने वाले ड्रोन्स वगैरह और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के पास मौजूद सेंसर नेटवर्क्स एक बहुत ही अहम बुनियाद फराहम करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि इसके बाद का असल नाजुक मामला कुछ और है, और अपनी बात को यूं मुकम्मल करते हैं। यहाँ सबसे बुनियादी चीज जम करना है। इस बात पर बहुत संजीदगी से गौर करना जरूरी है कि इंफरादी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद सेंसर्स को किनारों और मरकज दोनों जगहों पर मस्नूई जहानत पर मबनी तज्जिया और फैसला साजी की तहों के साथ कितनी तेजी से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि मुस्तकबिल के मैदान जंग में फायदा सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की तादाद और उनकी इकसाम से नहीं होगा, बल्कि असल बात यह होगी कि उन प्लेटफॉर्म से आने वाले डेटा को कौन ज्यादा तेजी और दुरुस्तगी से समझकर फैसले में तब्दील कर सकेगा। इस सवाल का जवाब हमें यह भी बताएगा कि नए दौर में कौन से ममालिक सबसे आगे होंगे। मैदान जंग में मस्नूई जहानत का किरदार तेजी से बदल रहा है, और यह वाजे है कि जो लोग इस तब्दीली को सही तरीके से समझेंगे मुस्तकबिल में फायदा उन्हीं का होगा। एक और पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

अभी जापान में जलजले से हलाक होने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है, जबकि इमदादी टीमें एक ताकतवर जलजले और गैस के मुबैना धमाके के बाद कोमामोतो में तबाह होने वाले एक शॉपिंग मॉल के मलबे तले दबे बच जाने वालों की तलाश जारी रखे हुए है। वजीर आजम सनाए ताकाइची ने हलाकतों की नई तादाद की तस्दीक की है, क्योंकि हंगामी कारकुनों ने योन शॉपिंग मॉल में बचाव की कार्रवाइयां जारी रखी, जहां मंगल को आने वाले 7.1 शिद्दत के जलजिले के तकरीबन 50 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ था। हुकाम ने बताया कि बचाव करने वालों ने अब तक मलबे से 10 अफराद को निकाला है, जिनमें 4 की मौत की तस्दीक हो चुकी है, एक शख्स में जिंदगी के कोई आसार नहीं है और 5 दीगर मामूली से शदीद जख्मी हैं। जलजिले ने घरों को जमीन बोझ कर दिया, पुलों को नुकसान पहुंचाया, आग भड़का दी और लाखों बाशिंदों को बिजली और पानी के बगैर छोड़ दिया, जबकि अवाखिर हफ्ता दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का भी इम्कान पाया जाता है। हुकाम ने जलजिले के फौरन बाद शॉपिंग मॉल को खाली करा लिया था, लेकिन हुकाम का मानना है कि जब गैस का मुबैना धमाका इमारत में हुआ तो कुछ मुलाजमीन अंदर ही मौजूद थे। इस आफत ने दूसरे मकामात पर भी लोगों की जानें ली हैं। हुकाम ने तस्दीक की है कि यात्सुशेरू शहर में निपोन पेपर इंडस्ट्रीज के कारखाने में चिमनी का एक हिस्सा गिरने से 5 कारकुन हलाक हो गए और 4 दीगर अब भी लापता हैं। आज सुबह तक तकरीबन 22,670 घराने और तनसीबात बिजली से महरूम रहीं, जबकि तकरीबन 84,000 घरों को पानी की फराहमी में खलल का सामना रहा। हुकाम ने निकासी के मराकज़ में एयर कंडीशनिंग यूनिट्स तकसीम किए हैं, जबकि मुतासरा कम्युनिटीज़ में ईंधन और पीने के पानी के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। जंगमंदी की ताज़ा तरीन खिलाफ वर्जियों में से एक में गजा पर इसराइल के नए हमलों में 3 फलस्तीनी हलाक और 27 जख्मी हो गए। गजा शहर के मगरब में अलशती पनाह गुजीन कैंप में एक रिहायशी इमारत पर इसराइली फिजाई हमले में 7 अफराद जख्मी हुए। अलशिफा हस्पताल के तिब्बी हुकाम ने बताया कि जख्मियों को मुख्तलिफ दर्जे की चोटें आई हैं। रिहायशियों का कहना था कि उन्हें इसराइली एक खुफिया एजेंसी की जानिब से इनखला की वार्निंग मौसूल हुई थी, इससे पहले कि 2 फिजाई हमलों ने कसीरुल मंजिला एक इमारत को निशाना बनाया था। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि करीबी घरों को भारी नुकसान पहुंचा, जहां शहरी दिफा की टीमों के इस पर काबू पाने से पहले ही आग लग गई थी।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: मकामी हुकाम के मुताबिक क्रेवी रिह में एक रूसी मिसाइल हमले में बच्चों समेत 6 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए, जबकि रात भर कीव, लिवीव और वस्ती इलाकों पर होने वाली शदीद बमबारी के नतीजे में यूक्रेन भर में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। मकामी हुकाम के मुताबिक क्रेवी रिह में रूसी मिसाइल हमले में बच्चों समेत 6 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। लिवीव के मेयर ने तस्दीक की है कि वहां रूसी फिजाई हमलों में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। रूसी अफवाज की जानिब से गैर रिहायशी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाए जाने के बाद दारुलहुकूमत कीव में भी मुतादद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने कहा कि रूस बैलिस्टिक असलहे से दारुलहुकूमत पर हमला कर रहा है और उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो पनाहगाहों में चले जाएं। उन्होंने मजीद बताया कि कई गैर रिहायशी मकामात पर आग लग गई है। गुज़िश्ता रोज देर गए ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया था कि रूस ने एक बड़े हमले की तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि रूसियों ने चंद रोज कबल एक बड़े हमले की तैयारी की थी और इस बात का कवी इम्कान है कि यह हमला आज रात किया जाएगा। बराए मेहरबानी यूक्रेन के तमाम इलाकों में आज फिजाई हमले के इंतबाहात पर तवज्जो दें और महफूज रहें। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के इत्तेहादियों से मुल्क के फिजाई दिफाई निज़ाम के लिए इजाफी मिसाइल फराहम करने की अपील की भी तजदीद की है। यूरोप भर में अपनी शिद्दत में इजाफा करने वाली गर्मी की लहरें और तेज हवाएं बड़े आजम भर में बड़े पैमाने पर जंगलाती आग का सबब बन रही हैं। यूनान के जजीरे क्रीट और पेलोपोनिस के इलाके में लगी आग बुझाने की कोशिश के दौरान 3 फायर फाइटर्स हलाक हो गए हैं। क्रीट में मुतअद्दिद देहातों और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब स्पेन में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी जंगलाती आग का मुकाबला किया जा रहा है। सुबह अवेला में 43,000 हेक्टर से ज्यादा रकबा राग का ढेर बन चुका है, जबकि हुक्काम 180 किलोमीटर तवील लगी आग काबू में करने की कोशिश में हैं। मुल्क भर में इस साल जलने वाला रकबा 2,07,000 हेक्टर से तजावुज कर चुका है। फ्रांस और पुर्तगाल में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। फ्रांस के जनूब में जहां दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया है, 16 इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि अहम बुनियादी ढांचा

टैक्स एहलकार थे और बढ़ती हुई तादाद ने उनके काम का बोझ दिन ब दिन बढ़ा दिया था। 3 साल की कोशिशों के बाद 19 साल नौजवान साइंसदान ने अपने वालिद के हिसाबात को आसान बनाने के लिए पास्कलाइन नामी मैकेनिकल कैलकुलेटर तैयार किया। ये आला, जिसकी 8 मिसालें आज मुख्तलिफ अजायब घरों में नुमाइश के लिए रखी गई हैं, ने 400 साल तक मैकेनिकल कैलकुलेशन और हत्ता के कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी आगाज़ किया, लेकिन यह तजारती लिहाज से कामयाब नहीं हो सका क्योंकि यह काफ़ी बड़ा और महंगा था। उसकी नई इजाद ने रियाजीदान ब्लेज पास्कल को 400 साल तक फादर ऑफ द कैलकुलेटर का खिताब दिया, लेकिन रियाजीदानों की तारीख पर किताब के जायजे के दौरान इत्तेफाक से ये इंकशाफ हुआ कि यह मालूमात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं थी। उन्नीस सौ पचास की दिहाई में साइंसदानों ने मशहूर माहिर फलकियात कैपलर की एक किताब का जायजा लिया। किताब में एक मुख्तलिफ कैलकुलेटर की तस्वीर देखी। ये ड्राइंग फ्रांसीसी साइंसदान पास्कल से पहले की थी और उनका मूजिद जर्मन माहिर फलकियात और रियाजीदान विलहेम शिकार्ड था। कैपलर की किताब में रिकोनिंग क्लॉक के नाम से इस मशीन का जायजा लेने वाले साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि यह आला 6 हिंदसों तक के इजाफे और घटाव को दुरुस्त तरीके से अंजाम देता है और सारिफ को घंटी के साथ मुत्तला करता है, जो हिंसों के काफ़ी ना होने पर बचती है। तवील इल्मी बातचीत के बाद साइंसी दुनिया ने कैलकुलेटर की पहली दरियाफ्त का चेहरा शिकार्ड और पास्कल के दरमियान बांटना मुनासिब समझा। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों साइंसदानों के काम को मुख्तलिफ ममालिक में रियाजीदानों ने तैयार किया और आज के सुपर कंप्यूटर्स की बुनियादें रखी गईं। पहले पोर्टेबल और फिर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ताहम जदीद कैलकुलेटर के मूजिद का उन्वान दो फ्रांसीसियों की सवानह हयात में दाखिल हुआ। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।